0: inspires you? Nominate her today. Hurry. Nominations close August 16, 2026. Visit www.lotusfm.co.za to submit your nomination. Terms and conditions apply. Lotus FM, honoring the women who make a difference.
1: कवाली नगमों का ये प्रोग्राम लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है। मैं आपका मेहमान हूँ और खाकसार को इबी महमूद कहते हैं। तस्लीम आदाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दिस इज कवाली आवर एंड यू हैव जस्ट बीन लिसनिंग टू दीनियात ऑफ कोर्स होस्टेड बाय मरियम बीबी खान एंड आई एम श्योर एज यूजुअल यू हैव स्पिरिचुअली एनरिच्ड। इट्स 2 मिनट्स पास्ट 9। तो आइए हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज है।

इस सरजमीन पे तो पूछने की जरूरत है नहीं कि आला हजरत से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। बच्चा बच्चा आला हजरत पे कुर्बान है। ये पीलीभीत सुंदरपुर बगल में बरेली शरीफ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कोई भी कंट्री हो, आला हजरत के चाहने वाले मानने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। शेर पे तवज्जो,

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।